कतहु सुचे तुह के चेतना को चार किया, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो। साहेब गुरु गोविंद सिंह साहेब जी, बहुत प्यारी रचना अकाल उस्तत विच फरमान दी। कतहु सुचेत हो के चेतना को चार कियो, कतहु अचिंत हो के सोवत अचेत हो।

आओ भाई, आज दे दिन अरदास करिए। आशा साडे हिरदे विचों नफरत दी आंधी जो चलदी है उस नूं मिटा। बख्शिश कीती सी आप जी ने भाई कन्हैये उते, जिस वेले उसने दुश्मन नूं दुश्मन ना समझिया, फिर तू सिख हो के सिख नाल नफरत करें, गल बनेगी। कदी भी खून नाल खून नहीं तुलदा, पानी पाया ही खून तुलदे। नफरत नाल कदी नफरत खत्म नहीं होई, ओदे उते प्यार दा पाना पानी पाना पएगा। साच कहूं सुन ले हो सबै, जिन प्रेम कियो ते नहीं प्रभ पाए। बाबा गुरमुख सिंह जी एक गल आखदे हुंदे ने, तुसी किसे दे घर चले जाओ, तुसी उन्हां नूं कहो मैनूं प्यार दियो, कोई नहीं देगा। पर जे तुसी खड़ के कह दियो आओ लोको मैं तुहानूं प्यार दियां, हजारां लोग तुहाडे कोल आ। ये पहल तू करनी है। प्यार असा देना है, लेना नहीं। देवे तो ठीक है, पर असी कहने इन्हें फतेह नहीं बुलाई, असी क्यों बुलाइए? ना भाई, वो नहीं बुलांदा, तू बुला ले, तू प्यार कर, तेरा फर्ज है। हंकार ते नफरत दी आंधी विच ऐ मेरे पातशाह, जिवें तुसी मलम ते पट्टी दे दित्ती सी, मानो गाउंदा गाउंदा यही कुछ कह रहा सी। भावे कोई मोमन वेख रहा है, भावे कोई पहाड़ी राजा है, कोई हिंदू है, कोई सिख है, पानी मुंह विच देंदा होया इको ही पुकार है, केड़ी

कऊ जच गंधर्व उरग कऊ विद्याधर कहू भय किन्नर पिसाच कऊ प्रेत हो कहूं हो के हिंदू आ गायत्री को गुपत जप्यो कहूं हो के तुरका पुकारे बांग देत हो कहूं को कुकाब हो के पुराण को पढ़त मत कतहूं

कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अब गुण ना विचारो कोई। एक्सटेंड योर मर्सी ओ जनरस गिवर लॉर्ड ऑफ द मीक, प्लीज डू नॉट कंसिडर माई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। माटी का क्या तो पै स्वामी, मानस की गत ए ही। हाउ कैन डस्ट बी वॉश्ड, ओ माई लॉर्ड एंड मास्टर, सच इज द स्टेट ऑफ मैनकाइंड। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, ओ माई माइंड सर्व द ट्रू गुरु एंड बी एट पीस। जो इच्छो सोई फल पावो, फिर दुख ना व्यापै कोई। Whatever you desire, you shall receive that reward, and you shall not be afflicted by pain any longer. Kache pande saaj nivaje, antar jyot samai. He creates and adorns the earthen vessels. He infuses his light within them. Jaisa likht likhya tur karte, hum taisi kit kamai. As is the destiny preordained by the Creator, so are the deeds we do. Man tan thaav kiya sab apana, eho aavan jana. He believes the mind and body are all his own. That is the cause of his coming and going. Jin diya so chit na aave, mohe ant laptana. He does not think of the one who gave these things. He is blind, entangled in emotional attachments. Jin kiya soi prav jaane, har ka mahal apara. One who knows that God created him reaches the incomparable mansion of the Lord's presence. Bhagat kareem, har ke gun gaama, nanak das tumhara. Worshipping the Lord, I sing his glorious praises. Nanak is your slave. कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण अवगुण ना विचारो।

सच्चे पातशाह। प्यारे गुरुदेव सतगुरु साहेब श्री गुरु रामदास जी महाराज, इस शब्द दे विच ये दसते हैं कि आप जी की आत्मक अवस्था इस तरह की है कि हों जीवा नाम ते आए। जदों तक मेरे ध्यान दे विच ऐ वाहिगुरू तेरा नाम तेरी याद रहिंदी है, उदों तक मैं अपने आप नूं अलाइव महसूस करदा हां, जिंदा महसूस करदा हां।

तू मेरो प्यारो तो कैसी भूखा है, भाव मेरिया सारिया भूखा तेरे प्यार नाल ही दूरियां दूर होंदिया। सो नाम वाला जो है उसके नाल महाराज जी का प्यार है। इसे करके कहते हैं मेरे प्रीतमा हो जीवा नाम ते आए। ऐ मेरे प्रीतम, प्रीतम बहुत प्यार दे नाल आख्या होया एक एक्सप्रेशन है। ऐ मेरे प्रीतम, तेरा नाम जदों तक मेरे ध्यान च है मैं अपने आप नूं जिंदा महसूस करना, ते तो विछड़ना मेरे वास्ते मरण समान। तू मेरो प्यारो तक कैसी भूखा, और आखते हैं अमृत प्रियता नाम प्रिया प्यारा। कहते हैं मेरे प्यारे का जरा नाम है ना वो अमृत है, वो मृत्यु तो रहत है, इतना महान है। सो इत्थे एक प्यारा आंदा है, इत्थे एक हस्ती आंदी है, इत्थे एक ऐसी शख्सियत आंदी है जिसके नाल महाराज जी का प्यार है, अते उस प्यार करके महाराज जी नूं उसका नाम प्यारा लगता है। साध संगत जी, मैं आप जी के सामने थोड़े जहे प्रमाण रखन लगा हाँ जिन्हां च बार बार बार बार लफज आएगा नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार नाम प्यार। ध्यान नाल सुनना, एक ही लफज आएगा बार बार हरेक लाइन च नाम प्यार। कहते हैं

0: दूसरी लाइन, जिन नाम प्यार, कहते जिन्हों का नाम दे नाल प्यार है वो जागे हुए हैं, बाकी सब सुते पे।
1: से जन जागे जिन नाम प्यार,
0: एक और पंक्ति,
1: गावण गावे जिन नाम प्यार,
0: कहते गाँवे भी उही हैं जिन्हों का नाम दे नाल प्यार। एक और पंक्ति कहते हैं,
1: एक नाम तारे संसार, गुर प्रसादी नाम प्यार,
0: तो बार बार नाम प्यार आ रहा है।

गुरु महाराज जी के पास वो नाम वाला है, उस नाम वाले दे नाल महाराज जी का प्यार है, उस दे नाल मुहब्बत है। इस करके गुरु महाराज जी नू उस दा नाम प्यारा लगता है। सो इथों दो नुक्ते सिद्ध हुंदे हन। नंबर एक कि गुरु महाराज जी दा अगर उस नाम वाले दे नाल प्यार है ते गुरु महाराज जी ही सानू उस नाम वाले तक ले जा सकते हैं। गुरु महाराज जी ही उस नाम वाले नाल साडा प्यार पवा सकते हैं, क्योंकि प्यार किसी ना किसी एक्सपीरियंस के बेस उते हुंदा है। उस नाम वाले दे नाल सानू मिलाणगे, उस नाल मिलन दे नाल जो सानू एक्सपीरियंस होएगा वो इतना वंडरफुल होएगा, इतना मैजिकल होएगा, इतना मिरेकुलस होएगा कि इंस्टेंटली वी विल फॉल इन लव विद दैट। पर जब तक असी उसको मिलांगे नहीं, उस नाल प्यार किवें हो सकेगा? तो प्यार पाउण दे वास्ते कोई विचोला चाहिदा है जिहड़ा उसको जानदा होवे, उस तक पहुंच रखदा होवे अते दूसरा नूं उस तक ले जा सकदा होवे। उही प्यार पवा सकता है ना। हुण असी महाराज जी तों आओ गुरबाणी चों पुछिए, सच्चे पातशाह साडी समस्या यह है कि साडे पास प्यार नहीं है। आप जी का तो प्यार है पर साडे पास प्यार नहीं है, तो फिर साडा प्यार किस तरह पवे? सवाल मेन इशू यह है, महाराज जी आप जी दे घर रब ही रब है और उसका नाम ही नाम है। आप जी नू ओ भी प्यारा है, उसका नाम भी प्यारा है, पर साडे ते तरस करो ना, ते असी उसनू जानते हैं ना, साडा उसके नाल प्यार है। क्योंकि जे प्यार होवे ते फिर यह किस तरह हो सकता है कि साडा उसका नाम जपन च मन ना लगे? यह किवें हो सकता है? जे प्यार होवे तो मन ना लगे। जब प्यार हो जाता है उदो टाइम एंड स्पेस दोनों भुल जाते हैं, तो सानू नाम जपन लग्या नू कदे लत थक जाएगी, कदे कमर दुखेगी, कदे कुछ होएगा, कदे इचिंग होएगी, और असी टाइम देखते रहांगे। एक घंटा सानू नाम जपन लिए आख्या जाए तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम है। तीन घंटे की असी पिक्चर आराम नाल देख सकते हैं। सो साडा प्यार नहीं, लेट अस एडमिट दिस। गुरु महाराज जी का प्यार है उस नाम वाले दे नाल, ते जिस दे नाल प्यार होवे उसका नाम भी प्यारा लगता है और उस दी सारियां ही चीजा प्यारियां लगती हैं। मेरा नाम ही नहीं, जिस दे नाल प्यार होवे उसकी हर वस्तु प्यारी लगती है। इस करके महाराज जी ने आख्या है, तेरे नाम अनेका रूप अनंता, कह न जाई तेरे गुण के ते। उस दे नाल प्यार है करके कहते हैं तेरे अनेका तेरे च गुण हैं, क्योंकि जिदे नाल प्यार होवे उच ही गुण नजर आया करते हैं। जिदे नाल प्यार ना होवे उच भावे गुण भी होण तां भी अवगुण दिसिया करते हैं। महाराज जी कहते हैं तेरे अत्यंत गुण हैं, अते उस दी हर चीज तो महाराज कहते बलिहारी कुदरत वसिया, कहते तेरी कुदरत तो भी मैं बलिहार हूं, तेरी कुदरत तो मैं बलिहार हूं। यह सब कुछ क्यों है? क्योंकि फाउंडेशन जो है वह प्यार दी है। महाराज जी का उस नामी दे नाल प्यार है, उस दे नाम नाल प्यार है, उस दी रचना दे नाल प्यार है। इत्थों तक के असी तो अपने आप से कई दफा कर्स करते हैं कि सानू लाइफ क्यों मिल गई है, वट टू डू विद इट वी डोंट नो। समटाइम वी इवन गो टू द एक्सट्रीम ऑफ टेकिंग अवर ओन लाइफ। पर महाराज जी आखते हैं वाह असम तू वाह जिन रच रचना हम की है। उस दे नाल प्यार होण करके महाराज जी अडोर करते हैं कि तू कमाल है, किस तरह का तू सानू बनाया है। कहते हैं वाह असम तू वाह जिन रच रचना हम की है, जिसने रचना रच के सानू बनाया है।
कितनी खूबसूरत रचना है। अते महाराज जी नू वाहिगुरु नाल प्यार होण करके उसकी हर चीज इतनी प्यारी लगती है कि गुरु महाराज जी इस संसार नू कहिंदे हन ये अमृत की वाड़ी है, ये अमृत का एक बगीचा है। पर सानू थोड़ा लगता है अमृत का बगीचा, साडे लिए उन्होंने कुछ होर आख्या। हुण सतसंग जी कीर्तन का अज दे कीर्तन का जो आखिर नुकता आप जी की सेवा च मैं रखना चाहना हाँ, वो एक समस्या है, एक इशू है कि महाराज जी का तो प्यार है, महाराज जी उस नूं जानदे हन वो कित्थे है, महाराज जी नूं उसकी हर वस्तु के नाल प्यार है, महाराज जी उसके प्यार च इतने भिजे पे हन कहिंदे हन आखां जीवां विसरे मर जाओ, कहिंदे हन तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे प्राण है, तू मेरे लालन तू मेरे प्राण, तू मेरे साहेब तू मेरे खान, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संगीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमखना जाई रहना, ए प्यार है, ए प्यार है। तू मेरा पिता तू है मेरा माता, तू मेरा बंधप तू मेरा प्राता, तू मेरा राखा सबनी थाई ता भौ के हा काड़ा जी, ए प्यार है। मेरा मन एक ही प्रेम अंग है, मेरा मन अपने उस एक प्यारे नु ही चाहता है और कुछ चाहता ही नहीं है, ये है प्यार। उहा प्रेम प्री केंदन ओ प्री जो प्यारा है महबूब है केंदे बस ओ उसका मेनु प्यार ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इतना प्यार। एक सिनेरियो है कि परमात्मा कहता है कि आप जी प्यार दी जगह कुछ होर ले लो, प्यार ही क्यों मंगते हो, कुछ होर ले लो, होर बहुत कुछ दे सकते हैं, की दे सकते हो, हीरे लाल जोहरात मान मोती बहुत कुछ दे सकते हैं, ये ले लो। महाराज जी आखते हैं हुण सुन वाला शब्द है कहिंदे अत्यंत चीजा खिलारियां पईयां हन सामने, अकाल पुरख पुछता है तुहानू की चीज चाहिदा है, ते विचकार ही एक थां ते उन्होंने प्यार रख्या है, ते महाराज जी आखदे हन उस वल उंगली करके ओ उहा प्रेम प्री कहिंदे ओ प्री दा प्रेम ही चाहिदा है, कनक माणक गज मोतियन लालन, कनक यानी सोना, माणक कनक माणक स्टोन्स बहुत कीमती कीमती स्टोन्स, कनक माणक गज हाथी, कनक माणक गज लालन डायमंड्स, कनक माणक गज लालन नह नह नहीं कहिंदे नहीं, तीन वारी आख्या है कहिंदे इन्हां चो मैनूं कुछ नहीं चाहिदा सिर्फ प्यार चाहिदा, तेरा प्यार चाहिदा। कनक माणक गज मोतियन लालन, ना मैनू हीरे ना मैनू पर्ल्स ना मैनू स्टोन्स ना मैनू डायमंड्स, कुछ नहीं चाहिदा, की चाहिदा है उहा प्रेम प्री सिर्फ तेरा प्रेम चाहिदा। कनक माणक गज मोतियन लालन नह नह नहीं, राज ना भाग, राज ना भागन ना हुक्म ना साधन, किच किच ना चाहिए कहिंदे इन्हां चो मैनू कुछ नहीं चाहिदा, तो यह है प्रेम। सो महाराज जी दे कोल है प्रेम, साडे कोल है कुछ भी नहीं, असी खाली हैं, साडे कोल की है अंदर खाली प्रेम बेन, दैट्स व्हाट वी है। महाराज जी ने बाणी चाखे अंदर खाली प्रेम बेन आओ सारे आखिए, ये साडी अवस्था है, ये साडी कंडीशन है, ये साडी हालत है। साडे कोल पहरावा हो सकता है सुंदर, साडे कोल रस्मो रिवाज सारे हो सकते हैं, साडे कोल आलीशान गुरुद्वारे हो सकते हैं, लेकिन साडे कोल जे है नहीं ते की नहीं, अंदर खाली प्रेम बिन, सारे बोलो इस पंक्ति नु, अंदर खाली प्रेम बिन, साडे अंदर प्रेम तो बिना खाली है। अते महाराज जी आखदे हन जिथे अंदर प्रेम नहीं है कहिंदे ओ इंसान ऐस जगत विच जिहा आया जिहा ना आया ओ एक बराबर है, जिसके अंदर प्रेम नहीं है। ते गुरु गोविंद सिंह साहब जी महाराज ने भी आख्या है, साच कहो सुन ले हो सब है, जिन प्रेम कियो
ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਏ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਹਾਊ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਥਰ ਬਣੇ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਕੇ ਪਏ ਹਨ, ਸੁੰਨੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ, ਲਵਿੰਗਨੈਸ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜੋ ਫੁੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਸਿਰਫ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ ਵਨ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਹਨ

जवाब है बाणी। संतां संगत मिल रहे, क्योंकि संत प्रेम ही प्रेम हुंदे हैं, प्रेम रूप हुंदे हैं। संत स्वाय प्रेम तो अलावा और कुछ नहीं। ताई तो महाराज जी ने आख्या है, ना कोई बैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनाई। कहते मेरी सारे नाल ही बनती है, साड़ी ध्यान नाल अपनी जिंदगी च देखो, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, कदे किसे नाल नहीं बनती, साड़ी बनती किस दे नाल। पर गुरु बाबा जी आखते हैं सगल संग हमको बनाई, कहते मेरी सारे दे नाल ही बना दी है, मैं सारे नाल ही प्यार है। कहते प्रेम किवें लग सकता है, इसनु सुनो और नोट कर लियो बाद दे विच। कहते हैं संतां संगत मिल रहे ता सच लगे प्यार। इस तो भी होर स्पष्ट सिंपल करके आख्या, कहते हैं संत सहाय

बिन गुर प्रेम ना पाई है कहते गुरु तो बिना जो प्रेम वस्तु है ये नहीं प्राप्त हो सकती। तो सारी दुनिया के जितना भी आख्या जाता है ना मैं तेनू प्यार करता हाँ मैं तेन प्यार करता हाँ इत आदि शब्द जो वरते जाते हैं ये सारे ही फेक हैं। कोई किसी नू प्यार नहीं करता क्योंकि जितनी देर तक वो प्यार अंदर पैदा ही नहीं होया। हाँ असी किसी ना किसी तो सानू कोई जरूरत पूरी होंदी है उस जरूरत पूरी होने करके असी उस नू प्यार करते हैं। जो वो जरूरत पूरी ना हो तो साडा प्यार बदल जाता है नफरत च बदल जाता है। सो साडा प्यार किसी ना किसी नीड दे उत्ते बेस्ड वो नीड पूरी होंदी है तो असी उस नीड नू प्यार करते हैं। गुरु महाराज जी आखते हैं प्यार एक आत्मक अवस्था है प्यार एक स्टेट ऑफ माइंड है प्यार एक आत्मा दी एक क्वालिटी है प्यार एक आत्मा दी सुगंधी है प्यार एक आत्मा दा स्वभाव है। कहिंदे ओ गुरु तो बिना प्राप्त नहीं हो सकता बिन गुर प्रेम ना लभी। अगे आखते हैं गुरमुख सच्ची आशकी ऐ लाइन कह के समाप्त कर रहे हैं मैं। गुरमुख सच्ची आशकी सच्चा प्यार जित प्रीतम सच्चा पाई है जिस प्यार दे नाल ओ सच्चे प्रीतम वाहिगुरु नू असी पा सकना है ते उसने सानू प्यारा लगना है ते उसका नाम सानू प्राप्त होना है। कहने हन ओ आशकी जो है गुरमुख सच्ची आशकी जित प्रीतम सच्चा पाई है अंदिन रहे आनंद नानक सहज समाई है। कहते जेड़ा प्यार पा के दिन रात बलिस दे विच रहना है सहज दे विच रहना है। कहते हैं सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाई है। सारे इस पंक्ति नू बोलो सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाई है सच्चा प्रेम प्यार गुरपुरे ते पाई है। सो अज का कीर्तन इत्थे तक पहुंचा है के सानू जरूरत है उस ही किस्म दी प्यार दी जिस किस्म दा महाराज जी दा उस नाम वाले दे नाल प्यार है। महाराज जी दा उस नाम वाले दे नाल प्यार है उस दे नाम दे नाल प्यार है क्योंकि जिस नाल प्यार होवे उसका नाम प्यारा लगता है उसकी हर वस्तु प्यारी लगती है उसका हर कर्म प्यारा लगता है। तो साड़ी जाचना यह है कि सानू प्यार किवें प्राप्त होवे ताकि सानू भी नाम प्यारा लगे सानू उसकी हर वस्तु प्यारी लगे उसका हर कर्म प्यारा लगे वो प्यार सानू किवें मिले। इस तस्वीर दे विच इस पॉइंट ते जाके गुरु महाराज जी गुरु नू विच लैके आ रहे हैं कि विदाउट गुरु दैट लव इज इम्पॉसिबल गुरु तो बिना वो प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु ही है जिसनू वो तमाम वजह का पता है कि साडे अंदर प्रेम क्यों नहीं है अते गुरु ही है जिसनू पता है कि इन्हां दे अंदर प्रेम किस तरह पैदा करना है जहर नू किस तरह निकालना है पत्थरां नू रॉक्स नू किस तरह निकालना है। क्योंकि बाणी आखदी साडे अंदर ते पांच बड़े वड्डे वड्डे भूत रहिंदे हन पांच भूत सबल है देही इस देही च पांच बहुत शक्तिशाली भूत रहिंदे हन उत्थे प्यार कित्थे होएगा। कोई उन्हां भूतां नू बाहर निकाले कोई उन्हां पत्थरां नू बाल निकाले कोई जन्मां जन्मांतरां दी लगी हुई मैल नू बाहर निकाले पहलां उस नू प्यार दे काबल ते बनाए। प्यार इतनी अमलीक वस्तु है गुरु महाराज जी कहिंदे हन ओ सिर्फ गुरु ही कर सकता है अंदरली पहलां सफाई फिर गुरु प्रेम दा ही सागर है ते ओ प्रेम साडे अंदर पैदा कर सकदा सकेगा। जदों साडे अंदर प्रेम पैदा करेगा जिथे नाम वाला है उस दे नाल मिलाएगा उस मिलने च उस नाम वाले दे नाल प्यार होएगा ते उसका नाम प्राप्त होएगा ते उस दे नाम दे नाल भी साडा प्यार पाएगा। बाकी दी विचारां कल नू इत्थों ही कंटिन्यू करांगे। आओ इस पंक्ति नू गा के जो कुछ कहा गया है इस नू याद रखने की कोशिश करनी ते कल नू समय से दर्शन देने। मेरे प्रीत मां हों जीवा नाम ते आए एक प्यार दी एक मॉडल है एक प्यार दी इंतहा है कि गुरु महाराज जी कहते हैं कि तेरा नाम मेरे ध्यान च है ते मैं जीना हाँ वरना कहते मेरे तो जीना भी मेनू मुश्किल लगता है। प्यार नाल सुनो और गाओ।

0: अकाल मूर्त अजूनी साहेबं गुरु प्रसाद आशा माला पहला वास लुकाना शोक भी महले पहले पहले के तुंडे असराजे
1: श्लोक मल्ला पहला बलिहारी गुरु अपने जोहारी सदवार जिन मान

सत्य ब्रह्मांड, सत्य तेरे लो सत्य आकार, सत्य तेरे करने सर विचार, सच्चा तेरा अमर सच्चा जीवन, सच्चा तेरा हम सच्चा फरमान।

0: the way you see the world.
1: फल तो वही पाइए जे वही कर कमाइए जो होवे पूर्व लिखा था तूर्त

में शरीर का एकरत दुआ तुम तो फिर मुझे यकीन पिता सतगुरु संतों का धर्म दुआ देते।

ऐसा हर सेविए नित ध्याइए। साहिब गुरु रामदास साहिब जी फरमान कर दे, ऐसा हर सेविए नित ध्याइए, जो खिन में किल बिक सब करे विनाशा, जे हर त्याग अवर की आस कीजे, ता हर ने फल सब घाल गवास। मेरे मन हर ऊपर कीजे भरवासा, जे जाइए ते नाल मेरा स्वामी, हर अपनी पैज रखे जननासा। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पे, ता आगे अपनी बिरथा बहुत कढ़ासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पे, जो तुम्हारे दुख तत्काल कटासा।

0: सिकंदर
1: को हर समान नहीं राजा ए तू पद सब दिवस चार के झूठे करत दिवाजा तेरो जन होए सो एकत डोले तीन भवन पर छा जा हाथ पस

बिन घोर अंधार गुरु बिन समझ न आवै गुरु बिन सुरत न सिद्ध गुरु बिन मुक्त न पावै।

अकाल पुरख वाहिगुरु, तेरा जन, तेरा सेवक निर्थ करे गुण गावन, मूर्तियां दे सामने, ठाकुरां दे सामने लोग पूजा करन दे वास्ते नृत्यकारी करते से, नाच करते से, जो देवदासियां सन वो डांस कर दिया सन। गुरु साहब, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, तेरे भगत की जो नृत्यकारी है, तेरे सेवक की जो नृत्यकारी है, तेरे डिवोटी का जो रियल डांस है ना, तेरा जन नृत्य करे गुण गावे। वाहेगुरु, तेरे गुण गाने ही तेरे जन दे वास्ते नृत्यकारी, तेरे गुण गाने ही तेरे दास दे वास्ते डांसिंग है, तेरे गुण गाउण दे विच ही सारा डांस आ जांदा। तेरे दास नू देवदासियां दी तरह मूर्तियां दे खड़े सामने होके डांस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तेरे दास दा सारा जीवन ही डांस बन जाता। फिजिकल डांस जो आर्ट दे नाल सिख के असी करते हैं, वो ते किसी सर्टन टाइम ते ही किया जा सकता है, लेकिन तेरे दास दी हरेक मूवमेंट ऐसी है जैसी कि किसी बहुत मजे हुए किसी ट्रेंड डांसर दी। तेरे दास दी ते एक एक श्वास जो है वो तेरे गुणगाण दे विच किस तरह निकलती है। तेरा दास ते बहंदियां उठदियां हर नाम ते आवे, उस ते अंदर दी आत्मा डांस करती है वाहिगुरु तेरे गुणगाण दे नाल। तेरा जन नृत्य करे गुण गावे। अगली पंक्ति, रबाब पखावज ताल घुंगरू अनहद शब्द बजावे। ऐ अकाल पुरख वाहिगुरु, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, तेरे दास दे वास्ते हमेशा अनहद शब्द नू, यानी वाहिगुरु दी सिफत सलाह वाले शब्द नू अपने अंदर बजाना ही तेरे दास दे वास्ते रबाब है, पखावज यानी तबला है, ताल यानी छैणे हैं, अते घुंगरू हैं। भाव अकाल पुरख वाहिगुरु दी सिफत करनी ही डांसिंग है। Praising of God is the real dancing. To be tuned with Shabad is the real instrument. Guru Sahib kehnde hain, Rabab, Pakhavaj, Taal, Gunguru. Rabab, Pakhavaj kehnde hain, Mirdangam. Jo saag, jis utte Pakhavaj bajaya janda hai. Kehnde hain, Rabab, Pakhavaj, Taal kehnde hain, Chhainyan. अते कुंगरू जो डांस करने वाले लोग पैरां दे नाल बंद हैं, कहंदे ऐ वाहिगुरु सही साज ते तेरे गुण गाने ही हैं, बाकी बाहरले साज ते बहुत ही टेंपरेरी हैं। जितना चिर तेरी सिफत सलाह दा साज ना अंदर बजे, उतना चिर ए बाहरले साज जो हैं वो फोके हैं। बाहरले इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये ते पल दो पल दे वास्ते हैं। असल साज ते ओ है जो तेरे शब्द दी अंदर धुन कायम रहे, तेरी सिफत सलाह दे नाल तेरे दास दा जुड़िया रहना ही असल डांस है अते असल साज है। अज दे इस शब्द दे विचों असी ए सिखना है कि एक ते दुनिया दे विच बाहर साज हन, बाहर डांस है, बाहर एंटरटेनमेंट है, लेकिन जद के साडे धर्म दे विच ही सारा कीर्तन जो है वह साजां दे नाल ही कीता जांदा है। लेकिन गुरु साहब ने सानू यह समझाया है कि किते इन्हां साजां तक ही ना रह जाए, किते जो असल साज है जो जिंदगी नू ही साज बनना चाहिए है। ऐसा ना होवे कि बाहरला साज ते तुसी बजांदे रहो लेकिन जिंदगी तुहाडी बिसुरी रहे। कोई इंसान बाहरले साजां नू ते सुर करना जानदा होवे लेकिन अपनी जिंदगी दे साज नू ओ सर ना कर सके, ते हजूर कहंदे हन बाहरले साज दा कोई भी फायदा नहीं। मैं अपनी जिंदगी दे विच बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन देखे हैं, बड़े बड़े तबला निवास देखे हैं, बड़े बड़े गवैये देखे हैं,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗੀਤ ਦਾ, ਸੁਰ ਦਾ, ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਧਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਸੂਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਕਿ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਤਨੀ ਭਟਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਮਾਹਰ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਵਜਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਇਨ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ। ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਮਿਜ਼ਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਮਿਜ਼ਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਲਾਈਫ ਇਟਸੈਲਫ ਅਗਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗੀਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਤੋ ਆਓ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਾਰ ਬਾਰ ਗਾਇਆ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਜਨ ਨਿਰਤ ਕਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰਾ ਦਾਸ, ਤੇਰਾ ਜਨ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਨਿਰਤਕਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੜਾ ਡਾਂਸ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਉਣਾ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰੀ ਛਾਈ ਪਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ। ਇਹ ਤਮਾਮ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਵਿਸਮਾਦਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਸ ਦੀ ਥ੍ਰਿਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਤੇਰੇ ਜਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸਲ ਡਾਂਸ ਹੈ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫ਼ਾ ਹੋਰ ਗਾਈਏ।

मंगन भी आए पंड होवे दोस्ती कोनो चले रहा है पंड मुआ पन पालिया पन बंदा सोख मंदा खेत राजा पंडो ही पंड के पड़े बाई ना कोई ना पड़े वारा कुछ जा सोई।

चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजम्भम सर्वदा सर्व जुगते दुखा

अज श्री अबचल नगर विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी धर दशमेश पिता दे चरणा च बेनती करके नंद लाल जी कह रहे हैं, हे सतगुरु, सिख पंथ की सिरजना करन वाले खालसा पंथ नू रचनहार साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरसिख की रहत नू आप दर्शाउणा करो। गुरसिख का कर्म की है? सतगुरु गरीब नू आज सचे पातशाह महाराज ने भाई नंद लाल दे

सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके ते जेड़ा सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउन वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा, प्रात काल सत संग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा, गरीब नवाज कहंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है, ओ गुरसिख गुरसिख नहीं गरीब नवाज।

कहां वे हर जस सुनते बात लवे। गोबिंद सिंह वह जमपुर जावे ते गुरसिख अमृत वेले उठिया। अमृत वेले उठ के सतगुरु जी दी हजूरी अंदर पहुंचया ते गुरु की संगत अंदर बह गया। गुरु की संगत विच बैठिया होया सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज दे पावन बचन सुनदा नहीं बल्कि नाल दियां नूं भी नहीं सुनन दिंदा। ते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ऐसे गुरसिख प्रथ्याए लिखदे ने भाई हर जस सुनते बात चलावै। हरी परमात्मा दी बाणी सुनदिया हरी परमात्मा दी कथा हो रही होवे हरी रब परमात्मा दी गुरबाणी दा कीर्तन हो रहा होवे ते हर जस सुनदिया आपो विच गल्लां करदे रहन। गल्लां बातां करन वाले गुरसिख नूं महाराज कहंदे हन उसने जन्म व्यर्थ गवाया सतसंग विच बह के दूजे दा भी समा बर्बाद कीता। ऐसे गुरसिख नूं जमां दी मार पैंदी है सीधा जमपुर जांदा। हर जस सुनते बात चलावे हर जस सुनते बात चलावे गोबिंद सिंह।

गुरु का दिता होया निशान केसा दे अंदर कंघा रखना ते दोनों वक्त केसा दी सफाई करनी कंघा फेरना दस्तारा जड़ा है इसनू उतार के बड़े आदर सत्कार दे नाल दस्तार नू फिर सजाउना टोपी जी सिर दे उपर धर लैनी ए गुरसिख दा कर्म नहीं कंघा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बंद आई दातन नीत करे ते मुख दी सफाई करे क्योंकि जिस मुख विचों जिस रसना नाल परमात्मा दा नाम जपना ओ रसना पवित्र होनी चाहिदी ओ मुख पवित्र होना चाहिदा भाई नंद लाल जी गुरसिख दोनों वक्त कंघा करे गुरसिख दस्तारा सजावे झाड़ के छंड के दस्तारा सजावे अते मुख नूं पवित्र रखे।

अगला कर्म है भी दसवंध जड़ी किरत कमाई करनी उस विचों दसवां हिस्सा गुरु के अर्पित करना ते गरीबां गुरबियां दी सेवा करनी। दसवंध गुरु

चोरी ठगी यारी दा पैसा कतर कर दे ना। साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा है, ते जेड़ा गुरु नूं दसवंद नहीं देंदा, किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची।

जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी टोप लै लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिनों तक बनी रहनी रोजाना उसनु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु आज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हाथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु आज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा है ओ सत जन्म कोड़ियां दे जन्म दे विच बतीत करदा है। गरीब नु आज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते कोड़ा हो जांदा होए सिख सिर टोपी धरे सात जन्म कुश्ती।

अकाल पुरख महाराज दे दिते होए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। भाई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इन्हां दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे। जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हूब हू उस तरह लिखे जान बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वाधू चंगी गल है क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने फर्क

रोजाना दा उचारण वाहगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहगुरु वाहगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहगुरु करे, घर विच बैठा वाहगुरु करे, रसना दे उपर वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु दा टिका होवे, ते वाहगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे, ऐसा वाहगुरु हिरदे च वसे भई वाहगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछे। ए ना होवे वे गुरसिख नू वेख के राह ही छड़ जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है। गरीब नू सचे पातशाह ने आउन वाले समय नू वेख्या, इस करके ए पूर ने पा दिते, गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा,

शस्त्रहीन एक बू न होई रहतवान गुरखा सिंह सोई। गरीब नवाज कहंदे जेड़े पांच ककार दिते ने ना खालसे नूं पहनाए ने, पूरी यूनिफॉर्म तो बगैर, पूरी ड्रेस तो बगैर गुरु का सिख सिंह नहीं रह जांदा, खालसा नहीं रह जांदा। जिवें किसे ऑफिसर दी यूनिफॉर्म होवे, वर्दी होवे, उन्हूं लाजमी है वी जदों ऑफिस विच जावे, जदों काम ते जावे, जदों मालक दी हजूरी अंदर हाजरी होवे, उदों ओ दित्ती हुई ड्रेस नूं पहने। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नूं पंज ककार बख्शे ने, ते गरीब नवाज कहंदे मैं ए बर्दाश्त नहीं करांगा वी मेरा गुरसिख पंजा ककारां दा धारनी ना होवे, ला के फिरदा रवे, ऐसी गल ना होवे। शस्त्रहीन ए कबू ना होई, कदे वी शस्त्रहीन ना हो। शस्त्र हमेशा पास रखे, शस्त्र ते शास्त्र। शास्त्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ते शस्त्र है ए जेड़े पीर हन महाराज ने दिते ने रखिया वास्ते। ए हामी भरनगे सच्ची दरगाह दे अंदर के गुरु का सिख शस्त्रां दे नाल शास्त्र दी पूजा करदा सी। शस्त्रहीन ए कबू ना।

जुआ असत झूठ बोलना, चोरी करनी, मदरा शराब पीनी, नशियां दा सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी दा सुपना भी इसकी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशां खेडनियां, कार खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदक दी वरतों ना करनी। गरीब नवाज कहंदे ए पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे, ओ जवान गिणिया जाएगा, ओही असली मेरा जवान होए।

गुरु के सिखां कोल धन अपार है, ते फिर जिस कोल धन हुंदा है उसकी कीर्ति हुंदी है, जस हुंदा है। कीर्ति नूं सुन के गुरु का सिख अहंकार विच ना आवे। सुख गुरु ने दिता है, सुख नूं वेख के फुलिया ना फिरे, औगण ना करन लग जे। धन कीर्त सुख राज बढ़ाई, युवती जित सुत विद्या बहु पाई। दूजी है विद्या, विद्या पढ़ के विचारवान वड्डा हो जांदा है। किसे अहुदे ते पहुंच के गुरु ना भुल जावे, किसे अहुदे ते चंगे ते पहुंच के गुरु की सिखी ना भुल जावे। युवती सुत विद्या बो भाई, ए सब दात गुरु की जाने। ए सारियां दियां सारियां गुरु कीयां दातां जाने। दातां जान के मन अंदर रंचक मात्र भी अभिमान ना आवे, ना अभिमान करे ना अहंकार करे। गरीब नवाज साहब सच

मेरो दर्शन नहीं ते पापी त्यागे देख। वो ते अपने आप नु सिख ना मनन जिन्होंने केस मनाए हुए ने, मेरे तो सिख वह भी नहीं जिन्होंने अमृत नहीं छकिया, जिन्होंने पाहुल नहीं लई ते केवल केस धारण किए हुए ने, ते सबना मोहरे आके बहन का दावा करते ने। उची उची आवाज गुरु महाराज की दिती हुई बाणी का याप जाप करते ने पर आप पगाते नहीं। केस रखे हुए ने, पाहुल नहीं छकी हुई, खंडे बाटे का अमृत नहीं छकिया होया, वो भी मेरे सिख नहीं। ते जेड़े सहज धारी ने, जेड़े अपने आप नू कहाउंदे ने भी केस मना के भी गुरु के सिखा सिखी अंदर है, ओ मेरे सिख किवें हो सकते ने। साहिब गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज ने पवित्र वाक भाई नंद लाल नू सारे दे सारे दिते। भाई नंद लाल ने ए वाक गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी महाराज दे लिख ले। संकल्प कीता गरीब नवाज समयां दा समां बतीत हो जाएगा कि ए रहत मर्यादा सिखां दे अंदर ज्यों दी त्यों चलेगी। ए गरीब नवाज कहन लगे नहीं, मेरे सिख मेरा खालसा राज दे अंदर आके भटक जाएगा, ते जदों ए भटकेगा खुआर हो जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, दिन ब दिन खुआर हुंदा चला जाएगा, क्योंकि इस नूं राज पाउंदा नहीं। ते जदों इसने राज नाल प्यार कीता उदों इस दा प्यार गुरु नाल टुट जाएगा, सिखी दी दात मूलों निकल जाएगी। कुर्सी नाल प्यार हो गया ते गुरु नाल प्यार नहीं रहेगा, तख्त नाल प्यार नहीं रहेगा। जेड़ा गुरु के तख्त दे सामने अपनी कुर्सी डाह लेगा वो गुरु का सिख नहीं होएगा, वो खुआर हुंदा चला जाएगा। ते फिर समयां दा समां बतीत होएगा, इतनी खुआरी होएगी, उस खुआरी नूं हरन वास्ते फिर गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कलकी रूप अवतार धारण करनगे। निरंकार दे हुक्मां मुताबक लिखिया गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने 33 सवाइया

राग सोरठ वाणी भगत रविदास जी की। माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे। ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू।

जाओ तुम गिरवर ताओ हम मोरा. If you are the mountain, Lord, then I am the peacock. जाओ तुम चांद ताओ हम पहे हैं चकोरा. If you are the moon, then I am the partridge in love with it. माधवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे हैं, तुम स्यों तोर कवन स्यों जो है. ओ लॉर्ड इफ यू विल नॉट ब्रेक विद मी देन आई विल नॉट ब्रेक विद यू, फॉर इफ आई वर टू ब्रेक विद यू विद होम वुड आई देन ज्वाइन. जाओ तुम दीवरा तो हम बाती, जाओ तुम तीरथ तो हम जाती. इफ यू आर द लैम्प then I am the wick. If you are the sacred place of pilgrimage, then I am the pilgrim. Sachi preet hum tum se jori, tum se avar sang tori. I am joined in true love with you, O Lord. I am joined with you and I have broken with all others. Jeh jeh jaun tahan teri seva, tum so thakur aur na deva. Wherever I go, there I serve you. There is no other Lord, Master than you, O Divine Lord. Tumre bhajan katai jam phansa, bhagat het gaavai ravidasa. Meditating, vibrating upon you, the noose of death is cut away. To attain devotional worship, Ravidas sings to you, O Master. Madhve, tum na toro, तो हम नहीं तोड़े हैं, तुम स्यों तोर कवन स्यों जो है. राग सोरठ ताल छोटी तिन ताल 16 बीट.

0: सगले पौल के असर ले नानक निरपाओ निरंकार सच एक पहला पहला
1: नानक निरपाओ निरंकार और के चे राम रुमाल के त्या कल प्रमणी है के चे बेचार के तहन चान से गेम पूरे ताल बाजारी बाजार नायक ने बाजार

0: कैंस हो जानो ये तो संयम दुख जाए
1: औड़ी सेव की तीसल तो कई जिनी सज्जो सज्जाया मुनि मंदे पैन रखियो कर सुकृत धर्म कमाया मुनि दुनिया तोड़े बंदर ना अन पानी थोड़ा खाया तुम बख्शीसी अगला नित वह कलिशवाया बड़ी आई।